अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना।

शिया।

and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं. रेडियो गाना बजाते रहो दिल से. You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: सुनेगा ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पे यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी, याद करो। ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: कुछ याद आया रत्ना?
1: मैं रत्ना
0: रत्ना

0: तो क्या हो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। और एक स्पेशल ये भी है कि रेडियो हॉट स्टार में एक नया फीचर से जुड़ चुका है आज से, जिसे अपडेट करने के बाद आपको मिलेगा, जिसका नाम है लाइव चैट। आप उसमें सभी दोस्तों से अपनी बातें कर सकते हैं, आपका नंबर भी नहीं दिखेगा और आप सभी से बातें भी कर सकते हैं बिल्कुल अपना। लेकिन आपको लॉगिन करना होगा, जैसे कि लॉगिन करने के लिए मैसेज करते हैं वैसे ही आप यहाँ भी, तो उसका जरूर फायदा उठाएं और वहाँ पे जुड़े बिल्कुल व्हाट्सएप के ग्रुप जैसा, वहाँ पे बातें कर सकते हैं, स्टिकर भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए भाई, आते हैं इस गाने के बाद।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह सरफराज पटेल यानी सरफू भाई, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और उनके बाद जुड़ी है नाहिद अंसारी जी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है आपका भी नाहिद अंसारी जी। और मोहन निवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं अशोक देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। और बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बीके पंत जी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अभिषेक तिवारी जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं राहुल पासी जी। और मृणालिनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और आज का थीम 90s एंड न्यू स्पेशल है बता दूं। और शेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि निगाहों में तेरी डूबी जान जान को दिल करता है। अच्छा अच्छा, जाने को दिल करता है, ओके। लिखते हैं कि निगाहों में तेरी डूब जाने को दिल करता है और तेरी हर अदा पर मर मिटने को दिल करता है। यूं तो जमाने में खूबसूरत चेहरे हैं कहीं, पर सिर्फ तुझे अपना बनाने को जी करता है। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, आते ही छा गए आप। और साथ ही साथ सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और खुशबू कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अशुभ संध्या कह रही हैं। और अशरफराज पटेल जी, अच्छा ये तो लिखते हैं कि गाना अच्छा लगा। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी। डिमांड नहीं है, ये मेरी ही ये मतलब यानी कि मेरी पसंद का गाना था। एमडी फैज जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वाह जबरदस्त खूबसूरत गाने को सुनने को मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और नाजिम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और एस के जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन जी गुड इवनिंग, आज 90s न्यू स्पेशल में मैं गीत की फरमाइश कर रहा हूँ
0: जी। सर जी उसके लिए आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजना पड़ेगा, प्लीज आप सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिएगा। लेकिन अब मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ, सबसे पहले यानी कि चार दोस्तों के पास चलता हूँ, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और सैयद यूनुस जी, आत्माराम पाटिल जी, इनकी सबसे पहली पसंद है और क्या है जरा सुनते है ना।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है। okay. फिल्म का नाम है सनम बेवफा और गाने का बोल है, ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना।
0: अच्छा,
2: ये गीत सबसे पहले मैं आपको
0: थैंक यू
2: और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और सर्विस भगत जी।
3: अरजय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है सनम बेवफा, गाने का बोल है हरे दुपट्टे वाली जानम रुक जाना। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सब छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरेगंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, सुरोध भगत, आनंद शेखर, आनंद कुमार, सुनी कुमार, कुमारी सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी और आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई सभी बहन इसमें शामिल है, सभी को सुनर जी का जयराम
0: जी
3: के।
4: अस्सलाम वालेकुम आर जे अमन सर जी, मैं एसटी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ जी।
0: वेलकम जी।
4: और आज है 90s एंड न्यू स्पेशल, उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था सर जी मैं। फिल्म का नाम है सनम बेवफा और गीत के बोले, ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना, ये गीत के बोले सर जी।
0: okay.
4: और इस गीत के साथ मेरे जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुन रहे दोस्त उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
0: वेलकम है आपका। और आत्माराम पाटिल,
5: एंजॉय कीजिए इस गाने को। गुले गुलजार

0: बिल्कुल रुक जाना रुक जाना रुक जाना, वैसे फिर बैगी बहुत सारे आने लगे हैं। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोप जी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो और वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ राज मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं। ये क्या आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दिए हैं, ओके जी। और बीके पंच लिखते हैं कि हरे दुपट्टे वाली वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जी, ओके जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: अरे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा चार भाई का फरमाइश साहब शामिल कर दिए अपने प्रोग्राम में। हमारा अशोक देशमुख जी का और सैयद यूनुस जी का, आत्माराम पाटिल जी का, चारों भाई का फरमाइश साहब अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिए, धन्यवाद, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका, वेलकम है। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है दीदी आपका। और साथ ही साथ राहुल पासी जी लिखते हैं कि हरे दुपट्टे वाली वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके बाद आत्मराज जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया सभी बातों का। अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख,
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका। और रवि माड़े जी लिखते हैं कि वो हरे दुपट्टे वाली जाना रुक जाना सुपर लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं, दिल खुश कर दिया है। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनकर अच्छा लगा। और मोहन वाली लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा गाना, मुझे बहुत पसंद आया है। फैज जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: चारों दोस्तों की फरमाइश नंबर वन, बहुत ही बेहतरीन ईमान, सभी का धन्यवाद। एमडी फैज आलम मोहिद्दीन,
0: वेलकम जी आपका। और नाहिद जी लिखते हैं कि ओ जानम रुक जाना अभी दिल की बात बाकी है, ओ जानम रुक जाना जरा अभी दिल की बात बाकी है, और तेरे जाने से पहले एक मुलाकात बाकी है, और यूं छोड़कर ना जा, यूं छोड़कर ना जा मुझे, इन तन्हा राहों में और तेरे साथ जीने मरने के साथ अभी बाकी है। अच्छा, मिलजुली फरमाइश बहुत शानदार लगी है। और

0: बिल्कुल भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली कीर्ति यार, खोल देना यार। और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दिलीप कुमार जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच हुकुम चंद जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हुकुम चंद जी का डिमांड लाजवाब, मजा के सुन के। और मोहन वाली लिखते हैं कि वाह क्या सुपरहिट गाना है, भोली भाली लड़की खोलते दिल की प्यार वाली लड़की, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हुकुम चंद जी को। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और रवि जी लिखते हैं कि यानी कि तुझे खामोशी से ये चाहना पसंद है मुझे, अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, और तू समझ सके तो समझ ले मेरी आंखों से, मुझे लफ्जों में ब्याह करना नहीं आता है। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: बहुत अच्छा सुपर गाना है।
0: ओके जी, बस इतना ही है, हमें लगा कुछ और भी होगा। और संजय पटेल जी लिखते हैं ओ ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और रवि मार जी लिखते हैं कि भोली भाली लड़की खोल दे दिल की वाला गाना बहुत ही अच्छा लगा है, लाजवाब लगा है। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखती हैं कि ऊपर गगन है नीचे तू है सजना, हम भी जुड़ गए हैं। और बहुत ही प्यारी शानदार गाना की फरमाइश चल रही है। ओके जी, और एम डी फैजी लिखते हैं वाह एकदम जबरदस्त, सुनकर मजा ही आ गया है। और रवि जी लिखते हैं कि आज के गाने में वो पहली सी बात नहीं, अच्छा आज के गाने में वो पहली सी बात नहीं होती, 90s के नगमों के बिना तो रात भी रात नहीं होती, जब ये बजता है आशिकी या दिलवाले का वो कोई सुर, तो पुरानी यादों से मुलाकात हुए बिना बात नहीं होती है। क्या बात है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सुनाना चाहूंगा हमारे MD क्या नाम है आरिफ सिंधी जी का। आरिफ सिंधी जी सुनना चाहते हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, ओहो एक दिल रुबा है, सच में वो दिल रुबा है, ओ मेरी सुंदरता की मूरत है, एंजॉय द ट्रैक, एक दिल रुबा है, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं, फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो हम भी जुड़ चुके हैं न्यू सुपर सॉन्ग।
0: जी बिल्कुल वेलकम करते हैं आपका दिगंबर जी और राहुल पासी जी। लिखते कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वाह क्या गाना है, सच में मजा आ गया। धन्यवाद देते हैं भाई साहब को इस गाने की डिमांड करने के लिए। और नहीं जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम डिमांड के लिए आर एस सिंधी जी, थैंक यू सो मच। एंड राज मोहम्मद जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: सर जी एक गाना हमें भी सुनना है।
0: जी तो आप वहाँ भेज दीजिए, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज दीजिए और ये कहिए कि सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा। तो यन मोर रेडियो हॉटस्टार के ऐप में सबसे नीचे देखिए, दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, MORE मोर, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट का, वहाँ से आप सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन भी है, दोस्तों से बातें भी कर सकते हैं बिल्कुल दिल खोलकर। नंदलाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और बीके पंची लिखते हैं कि लवली चॉइस, वाह थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और सुनील कुमार लिखते हैं कि नमस्कार, हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है बांका बिहार वाले। और खुशबू जी लिखते हैं कि हमें यानी कि कल आरजे आकांक्षा जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये गाना भी एकदम मस्त है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वाह वेरी नाइस सॉन्ग है। और साथ ही साथ शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बात इतनी सी है कि तुम अच्छे लगते हो। जी बिल्कुल सही बात, एकदम आपने मेरे दिल की बात कह दिया है। लिखते हैं कि बात इतनी सी है कि तुम अच्छे लगते हो और कभी हंसते हो तो कभी रुलाते हो, अच्छा इन कभी हंसाते हो तो कभी रुलाते हो, और पर चाहे इन कितनी भी शिकायत हो तुमसे, जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम नजर आते हो। आए हाय हाय हाय क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने इस लाइन को भेज कर। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूं प्रोग्राम से, वेलकम करते हैं आपका भी राधा कृष्ण गोप जी। फैज जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
3: गाना तो बहुत सुपर है, मजा आ रहा है, तो एक लाइन है, ये लाजिम नहीं तुझे आँखों से देखूं, तेरी याद आना तेरे दीदार से कम नहीं है। MD फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
0: ओके जी धन्यवाद आपका MD फैज आलम जी मोहिद्दीन नगर से। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि तू मेरी दुआ भी है मेरी चाहत भी, लिखती हैं कि तू मेरी दुआ भी है मेरी चाहत भी, और तू मेरी मुस्कान भी है और मेरी राहत भी, और साथ रहे या दूर रहे जिंदगी भर, लिखते हैं कि साथ रहे या दूर रहे जिंदगी भर, मेरे दिल की हर धड़कन में तू ही बस तू है। और रब से बस इतनी सी दुआ है मेरी कि हर जन्म में मिले तू और मुझे मेरी मोहब्बत तुझे। ओके थैंक यू सो मच। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे तुमसे शुरू होती है मेरी हर खुशी की कहानी, मैं कहूँगा कि तुमसे शुरू होती है मेरी हर खुशी की कहानी और तुम पर ही आकर ठहर जाती है मेरी जिंदगानी। मोहब्बत क्या है ये दुनिया चाहे जो समझे, मोहब्बत क्या है ये दुनिया चाहे जो समझे, मेरे लिए तो बस तुम ही तुम हो मेरी पूरी कहानी। ओके और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया इस गाने को। सुनील पवार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि वक्त मिले तो कभी हाल पूछ लिया कर, लिखते हैं कि वक्त मिले तो कभी हाल पूछ लिया कर और मेरे दिल का भी हाल थोड़ा जान लिया कर, दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं होती है और कभी बिन कहे भी ख्याल रख लिया कर। है क्या बात है। गजानन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गजानन सुलकार जी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं एक बार फिर से।
1: अमन सर जी मैंने सॉन्ग रिक्वेस्ट में सॉन्ग डाल दिया है,
0: अच्छा,
1: और मूवी का नाम भी, गाना गाने के बोल भी डाल दिए है।
0: अच्छा जी ओके, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने सिर्फ मूवी का नाम लिखा है जज मुजरिम, कौन सा गाना है, गाने तो मुझे उसमें दिख नहीं रहे हैं। अच्छा ओके, बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, अच्छा मिल गया ओके, गाना तो जरूर प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि तुम मिलो या ना मिलो ये किस्मत की बात है, लिखती हैं कि तुम मिलो या ना मिलो ये किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है, और किसी की मुस्कान में सुकून मिल जाए वही तो मोहब्बत है। और तो इसीलिए तो मैं भी कहूंगा कि तुझे चाहना मेरी सबसे खूबसूरत आदत है, कि तुझे चाहना मेरी सबसे खूबसूरत आदत है, और तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी इबादत है। जिंदगी चाहे जितने भी बदल जाए, जिंदगी चाहे जितने भी बदल जाए, मेरे दिल में तेरी जगह हमेशा सलामत है, हमेशा सलामत है। और यहाँ पर रवि जी लिखते हैं कि तेरी हर बात में कोई नशा सा लगता है, आए आए लिखते हैं कि तेरी हर बात में कोई नशा सा लगता है, और बिन तेरे हर दिन भी अधूरा सा लगता है, दिल की बात जब हरजमन जी की जुबानी उतरती है तो अजनबी का दर्द भी अपना सा लगता है, ये स्पेशल किरण जी के लिए है। अच्छा कोई बात नहीं है। और अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार वाले, बहुत बहुत वेलकम। इसी बात पर अगला जो डिमांड मेरे पास आया हुआ है मैं सुनाना चाहूंगा भाई आर के रवि जी की पसंद जो है, मेरा चांद मुझे आया है नजर। बिल्कुल मेरा चांद मुझे आया है नजर। इंजॉय द ट्रैक।

ए रात जरा थम थम के गुजर, और यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे संध्या पंडित जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और ओके, और यहाँ पे खुशबू कुमारी जी लिखते हैं कि इस गाने में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस गाने के लिए कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए, बिल्कुल। राहुल जी लिखते हैं कि ये कुमार शानू की आवाज में मिस्टर आशिक का लाजवाब गाना, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी। और मीना जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, वेलकम है मीना इब्राहिम जी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही सुपर डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और नाजिम जी लिखते हैं कि ये चांद तो हर रात आता है नजर, मगर हमसे मिलना नहीं चाहता कभी, हम तो उसकी रोशनी को तरसते हैं और वह हमारी तरफ देखता ही नहीं कभी, ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि बादल बादल बादल इन चांद छुपा सकता है, लिखते हैं कि बादल चांद छुपा सकता है आकाश को नहीं, और हम सारी दुनिया को भुला सकते हैं लेकिन आपको नहीं, आया है, थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं कि अच्छा, और सभी दोस्तों के भी नमस्ते। ओके, अजय भगत जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, वेलकम है अजय भगत जी। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, हम सर्वजीत शेट्टी जी का समझ कर चांद जिसको आसमान है, इंजॉय कीजिए इस गाने को जो मुझे बेहद पसंद है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। ये क्या कहते हैं, सुनते हैं पहले इनकी।
1: मेरा चांद मुझे आया है नजर, बहुत ही शानदार सॉन्ग भैया, मैंने रिक्वेस्ट बॉक्स में मेरा पसंदीदा गाना भेज दिया है, वह सुना दीजिएगा, धन्यवाद।
0: अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस तो बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, कोशिश करूंगा, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है कि नहीं। और वैसे फिलहाल मैं बता दूं, यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर गाना चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज के सभी गाने। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या सॉन्ग है, क्या डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और बबीता जी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया च्वाइस है, बहुत अच्छा लग रहा है, और शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये समझ कर चांद जिसको आसमान है, बहुत अच्छा लगा ये गाना, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। काजल झकाची लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: आरजे अमर सर जी, सरजीत सेट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं, और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सैयद यूनुस जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नगमा है, दिल खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और बीके पंच लिखते हैं सर जी लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच दोस्त को। और खुशबू जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, और जितने भी डिमांड किया उनको थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद बहुत लाजवाब चल रही है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे पूजा भास्कर लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने की डिमांड करने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि दुनिया में चांद की कीमत तो लिखती है कि दुनिया में चांद की कीमत तो किसी से नहीं हो सकता है, लेकिन कीमत या कीमती जरा सा मुझे बताएंगे, और लेकिन मेरा चांद ऐसा है कि इंडिया लेकर भी अगर ढूंढे तो भी उसके जैसा नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल ये इस गाने की लाइन थी। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जिसकी भी डिमांड है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और इसी बात पर यहाँ पे आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, 90s स्पेशल बहुत शानदार हो रहा है। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद के लिए सरोजी सेठी जी को धन्यवाद देता हूँ मैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त सरोजी सेठी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे असलम राणा जी का है। असलम राणा जी क्या सुनना चाहते हैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए, इंजॉय द ट्रैक असलम राणा जी।

0: प्यार में, प्यार में, प्यार में, प्यार में, प्यार में।
1: और असलम राणा जी आज भी बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि मैं ही हूँ वो लड़का हूँ ना, है कि नहीं, एक लड़की के प्यार में पागल हूँ जिसे मैं पकड़ के चलता हूँ।

0: मारिए।
1: ओ माय गॉड ऐसा मत करो यार यार। क्या जाना जी लिखते हैं कि असलम राणा जी का पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं असलम राणा जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और बीके पंच लिखते हैं असलम राणा जी का भाई पसंद बहुत ही शानदार लगा है। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अर्जे अमन सर जी, MD असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, वेलकम है आपका भी। और मीना जी लेते हैं, वाह ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच असलम राणा जी, लाजवाब गाना सुनाने। अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं ये पटना से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, लिखते हैं असलम राणा जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है, इसकी गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। MD नाजन जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मोहब्बत की उम्र नहीं होती, नहीं दौर होता है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, जब होती है तो बेहिसाब होती है जी, इन्हें प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बिल्कुल सही कहा गया है। और मोहन भाई लिखते हैं कि ये तो गाना बहुत ही सुपरहिट लगा है। अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लेकिन अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला वो मैं प्ले करने वाला हूँ, जिनका नाम है सुशील कुमार। और सुशील कुमार जी सुनना चाहते हैं मैं मट्टी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, एंजॉय द ट्रैक।

0: आशिक के साथ खुदा है।
1: वेलकम बैक और रेडियो हॉट स्टार जो दीवार बना अनिल कुमार हरिद्वार वाले लिखते हैं कि वाह क्या गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अजूबा फिल्म का शानदार गाना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और रविंद्र सानू, हम सबके दिल जिगर जानू रविंद्र सानू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, और अमन जी आपको भी गुड इवनिंग, और असलम जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और आज तो उनको यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई भी हो। रविंद्र सानू इन ताजपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, रविंद्र सानू जी आपकी आवाज़ यानी सुनने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सानू जी की आवाज़ नहीं आती है, वो फीडबैक नहीं देते हैं। मेरे पास कल भी मैसेज आया था, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक बोल कर दिया कीजिए, वहीं पर जहाँ पर आप मैसेज कर रहे हैं उसी के नीचे देखिए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन होगा, एक माइक बना होगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आप मुझे भेज सकते हैं, आपका रिकॉर्डिंग बिल्कुल आ जाएगा मेरे पास। और बीके पांजी लिखते हैं कि सर जी मैं माटी का गुड्डा वाला गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। मोहन हमारे लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं कि अजूबा फिल्म का मुझे गाना बेहद पसंद है मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, थैंक यू सो मच। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया गाना बहुत अच्छा लगा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। नाहिद जी लिखते हैं कि गजल कहूँ या शायरी या कोई हंसी ख्वाब लिखूं, और तेरे चेहरे की शादी को मैं कौन सा आफ्ताब लिखूं, यूं तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं तेरी तारीफ में, समझ नहीं आता कि तुझे दिल लिखूं या अपनी किताब लिखूं। आए है क्या बात है, मैं भी कुछ कह दूं क्या, मैं तो यही कहूँगा कि हजारों चेहरों में बसा एक चेहरा याद रहता है, हजारों चेहरों में बसा एक चेहरा याद रहता है, जो दिल के सबसे करीब होता है वो याद

0: आमना खान जी क्या कह रही हैं जरा सुनते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरा नाम आमना। ओके। आमना खान।
0: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है आमना खान जी आपका। और साथ ही साथ अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ किनका, नाम इनका सुनील पवार, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सुनना चाहते हैं तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए। इंजॉय द ट्रैक।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि चेहरे की हंसी में मेरी दुनिया बसती है। लिखते हैं कि चेहरे की हंसी में मेरी दुनिया बसती है और तुम मुस्कुराए तो मेरी हर शाम संवरती है। और तेरी मासूमियत पर ही तो दिल आया है वरना ये दिल किसी के आगे झुकता नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल पासी जी लेते हैं, राहत फतेह अली खान की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या पसंद है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब नगमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि तुम जो है जिंदगी में हर मौसम बहार बन गया। लिखते हैं कि तुम जो है जिंदगी में हर मौसम बहार बन गया और सुना था जो दिल मेरा वो प्यार का संसार बन गया। और तेरी मुस्कान ने हर गम को भुला दिया और तेरे साथ हर अधूरा सपना पूरा हो गया। अब बस एक ही दुआ है मेरे रब से कि तेरा साथ यूं ही रहे क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी बन गया। आए है क्या बात है। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि तू माटी का गुड्डा वाला गाना भी बेहतरीन लगा है। और अमीना कुमारी जी लिखते हैं कि मोहब्बत की किताबें तो दुनिया ने बहुत यानी कि पढ़ी होगी। अच्छा, मोहब्बत की किताबें दुनिया ने बहुत पढ़ी होगी लेकिन मेरी मोहब्बत तो ऐसी है कि जनाब ये जिंदगी तो तेरे नाम है, वादा है तुझसे मैं जब भी जन्म लूँ बस यानी तुझे ही मालूम और मेरा सारा प्यार तुझको ही दे दे। और ओके जी, थोड़ा सा इसमें मैं समझ नहीं पाया। ओके जी, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे खुशबू कुमारी लिखते हैं कि अभी यानी कि पूजा जी की शायरी बहुत अच्छी लगी जी। और ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है भाई? ये गजानन जी का ग्रुप का गाना है, होके मन आज मगन, एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और बीके पंचीत सिंह की बहुत ही सुपर हिट फरमाइश है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और मोहन वायर जी लिखते हैं कि गजानंद जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच गजानंद जी का ग्रुप। और आत्माराम जी लिखते हैं गजानंद जी का ग्रुप का गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी देंगे बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि अच्छा ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मीना जी लेते हैं वाओ क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लिखती हैं कि गाना चेंज हो गया था, वो ओके ये लिखती है कि गाना चेंज हो गया, गाना एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ, तो गाना तो चेंज होना ही होना है, ना चाहते हुए भी गाना चेंज हो रहा है क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ओके और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मतलब हो के मन आज मगर नाचे में छनन छनन वाला गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला डिमांड सुनिए हमारे दिगंबर जी का, सुनना चाहते हैं ये गाना बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता।

वेलकम बैक, फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं मेरे पास। और यहाँ पे कपूर जान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कपूर जी। और ओके, और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, कोई बात नहीं सर जी, मैं कोशिश करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि ग्रुप का डिमांड बहुत ही सुपर हिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, क्या गाना है, सच में दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि दिगंबर जी का डिमांड शानदार। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिगंबर जी का गाना मुझे बेहद ही लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिगंबर जी। और जाकिर खान लिखते हैं कि रेडियो गाना पर बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, रेडियो गाना पर तो सर्वर ठीक ही चलता है आजकल। बीके पंजी लिखते हैं कि बहुत ही सुपेर गाना है, फिर सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि इन तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, लिखते हैं कि तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, दिन महीना और साल नहीं बदलेगा, और मगर मेरे दिल का हाल भी नहीं बदलेगा। अच्छा, लिखते हैं कि दिल महीना साल बदलेगा लेकिन मगर मेरा दिल का हाल नहीं बदलेगा, और सांसों में रहकर तुम हमारे मेहमान बन गए। ये लिखती हैं कि सांसों में रहकर तुम हमारे मेहमान बन गए, और मुस्कुराए ऐसे कि तुम हमारी पहचान बन गए। लोग तो यानी पास रहकर भी हमारे ना बन सके, लोग तो पास रहकर भी हमारे ना बन सके, और तुम तो दूर रहकर भी हमारी जान बन गए, हमारी जान बन गए। ओके जी, तो मैं भी कुछ कह दूं क्या, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा अब कि ना कोई वादा ना कोई शर्त चाहिए, ना आपसे कोई वादा ना कोई शर्त चाहिए, बस उम्र भर तेरा साथ चाहिए। और जब तक चले ये सांसों का सफर, जब तक चले ये सांसों का सफर, हर पल बस तेरा ही प्यार चाहिए, हर पल बस तेरा ही प्यार चाहिए। वैसे फीडबैक भी और भी आया हुआ है, बता रहा हूँ मैं। मीना जी लिखते हैं कि वाव क्या लाजवाब गाना है, मीना इब्राहिम जी। ओके, और यहाँ पे खुशबू कुमारी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, और गाना चेंज हो जा रहा है जी, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है आपका। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सोहिल जी का। सोहिल जी सुनना चाहते हैं दुल्हन तू दुल्हा, मैं बन जाऊंगा, बिल्कुल बन जाऊंगा। एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक गाना बहुत अच्छा लगा। वैसे फिलहाल मेरे पास फीडबैक आया है, अब कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा कोशिश करता हूँ आपके लिए भी, और बीके पंच जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दुल्हन तो दुल्हा में बन जाऊंगी। और संजय पटेल जी लिखते हैं वाह क्या कमाल का सॉन्ग है, मजा आ गया है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा ये गाना सोहेल जी का, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सोहेल जी का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे प्रियंका जी, बहुत अच्छे समय पे आई क्योंकि आपका अगला गाना आप ही का आने वाला है, बहुत सही समय पर पहुंची है, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ यानी प्रियंका जी का, सुनना चाहती है क्या करते थे साजना लाल दुपट्टा मलमल इन वेदर ट्रैक।

वेलकम बैक, बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे नई चीज थे, वाओ अमेजिंग सुपर पसंद के लिए थैंक यू सो मच प्रियंका जी। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि प्रियंका जी का गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पसंद है उनकी। और बाबूलाल ने अनजान लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतना प्यारा डिमांड करने के लिए। कपूर जी लिखते हैं कि सुपर से भी ऊपर वाला गाना है ये। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी को पसंद, सुपर पसंद, थैंक यू सो मच, क्या करते थे साजना। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये प्रियंका जी को पसंद, सुपर चॉइस है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। राहुल पासी जी लिखते हैं कि लाल दुपट्टा मरमर का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। वीके पंच जी लिखते हैं कि वाह क्या पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। एंड एम डी फैज जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह नाइस पसंद, नाइस पसंद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि इंतजार मैं करती रही, हर धड़कन में बस तेरा ही नाम सजाती रही, और तू आएगा एक दिन यही उम्मीद दिल को देती रही, और तेरी यादों में से हर शाम महकती रही, और जब तू सामने आए तो लगा दुआ कबूल हो गई, और तेरी बाहों में आकर तो मेरी अधूरी मोहब्बत भी पूरी होगी। वाह वाह क्या बात है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि सिया जी का पसंद है। और ये आज मेरी पसंद का गाना लेके आई है, तेरा मेरा है प्यार अमर। और सच में ये गाना मुझे इतना पसंद है, मतलब जी मैं क्या ही बताऊं। इंजॉय द ट्रैक इन सिया जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जाने तमन्ना। और अमीना खान जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और जी ये डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और उनके बाद यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये तेरा मेरा है प्यार अमर, ये सच में बहुत ही प्यारा गाना है। और जिन्होंने भी इस गाने को पसंद किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके जी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि तेरा मेरा है प्यार अमर, बेहतरीन लाजवाब गीत सुनकर दिल खुश हो गया, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये सिया जी का डिमांड दिल खुश करने वाला है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। एमडी फैज लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह सुपर से ऊपर लाजवाब सॉन्ग के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किन का है जरा था देखना पड़ेगा मुझे, शायद आमना खान जी का है शायद मेरे ख्याल से, नहीं आमना खान का नहीं है ये, अमीना खान मतलब सॉरी मीना इब्राहिम जी का है, सॉरी हाँ मीना इब्राहिम जी का है। और मीना इब्राहिम जी एंजॉय कीजिए इस गाने को, मैं जिस दिन भुला दूं आप ये सुनना चाहती हैं आज, मीना इब्राहिम जी एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। मीना जी लिखते हैं कि जो मैं रूठ जाऊं तो मुझे मना लेना। अच्छा, लिखते हैं कि जो मैं रूठ जाऊं तो मुझे मना लेना और कुछ ना करना, बस अपने गले से लगा लेना, और दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, और सब कुछ स्वीकार है अगर साथ तेरा हो। मैं तो यही कहूंगा कि रूठने पर भी जो ना रूठे वो बात हो तुम, कि रूठने पर भी जो ना रूठे वो बात हो तुम, और छूटने पर भी जो ना छूटे वो साथ हो तुम। और यूं तो संजोई है यादें मैंने दिलों में कई, लेकिन यूं तो संजोई है यादों मैंने दिलों में कई, लेकिन जो भूले से भी ना भुलाई जाए वो याद हो तुम, वो याद हो तुम। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, मीना इमराम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे ये प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन सर,
0: yes.
2: आपने मेरा गाना सुनाया।
0: mm-hmm.
2: क्या करती थी साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले।
0: अच्छा गाती है।
2: छुप छुप के रोया करती।
0: ओहो, मत रोइए मत रोइए।
2: थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भैया। और साथ ही साथ यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि मैं जिस दिन भुला दूं अमन सर जी, लेकिन हम रेडियो हॉटस्टार सुनना नहीं भूलेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। एमडी फैज लिखते हैं कि बिल्कुल लाजवाब गाना है, बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये मीना इब्राहिम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जिस दिन भुला दूं, तेरा प्यार दिल से। और गजानंद जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी की पसंद, मैं जिस दिन भुला दूं, बहुत ही शानदार, सुनकर अच्छा लगा। और यहाँ पे लिखती है यानी पूजा भास्कर जी, बहुत ही प्यारी पसंद है, और थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। साथ ही साथ एस के जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं अमन सर जी आज का ओल्ड वर्जन तो बेस्ट, अच्छा इस सॉन्ग का यानी ओल्ड वर्जन तो बेस्ट था, बट न्यू वर्जन भी सुपर बेस्ट लगा। जी बिल्कुल, ये भी गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ आरजे सोनी जी का। आरजे सोनी जी, इंजॉय द ट्रैक।

रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि बे इंतहा वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ यहाँ पे यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की चॉइस लाजवाब लगी। पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद मुझे सुपर से ऊपर लगे, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे इस्माइल खान जी का है, मेरी दुनिया है तुझमें कहीं, बिल्कुल तुझमें ही है मेरी दुनिया। एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल मेरी दुनिया है तुझमें कहीं। और मीना जी लेते हैं मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और प्रियंका जी लेते हैं बहुत ही नाइस गाना चल रहा है। राहुल पासी जी लेते हैं वास्तव मूवी का शानदार पसंद है। और मीना जी लेते हैं कि लिखते हैं कि मैं अच्छा ओके और यहाँ पर रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि मेरी दुनिया है तुझमें कहीं वाला गाना बहुत ही प्यारा लगा है, अच्छा लगा। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं वास्तव का ये गाना सच में बहुत प्यार लगा है। अनिल कुमार हरिद्वार वाले गाना सुनना चाहते हैं, आपके प्यार में हम सवारने लगे। Enjoy the track।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे। मोहन भाई लिखते हैं कि सुपरहिट गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर,
0: जी बोलिए।
1: ये गाना भी बहुत ही अच्छा आपने सुनाया है।
0: हाँ।
1: इसके लिए मैं दो लाइन गाना चाहती हूँ।
0: हाँ, गाइए गाइए।
1: मेरी दुनिया है तुझे में कहीं,
0: क्या बात है,
1: तेरे बिन में क्या कुछ भी नहीं।

0: थैंक यू, और मैं चाहती हूँ कि ये लाइन आप भी गाएं।
1: अच्छा, ओहो, क्या बात है। अब तो गाना खत्म हो गया है, लेकिन नाही जी लिखते हैं, वाओ क्या सुपर वंडरफुल फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि राज मूवी का गाना बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि अच्छा ओके, कोशिश करेंगे लेकिन बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करने वाले हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि आपके प्यार में हम सवाने लगे, अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना है। और असलम राणा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन भाई जान, मैं भी 7:30 बजे से आपके प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी फरमाइश तो नहीं सुन पाया, ना तो आज और ना ही यानी कल, क्योंकि मैं मगरिब की अजान की वजह से मैं कुछ देर रेडियो ऑफ कर देता हूँ और इसी समय पर मेरा गीत प्ले हो जाता है, कल भी और आज भी, लेकिन कल और आज के लिए दोनों के लिए दिन के लिए धन्यवाद मेरे गीत को प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद। और मेरा गुमान ये भी है कि रहता है कि आप गीत मेरा गीत नहीं, देखिए एक्चुअली आज आप बने हैं सॉन्ग विनर, अगर आप एक और गीत सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं,

वेलकम बैक। और ये गाना मुझे बिल्कुल नहीं था याद, नहीं तो मैं जरूर गाता। वैसे गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी लिखते हैं कि ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरे दोस्त। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी जी लिखती हैं आपने कौन सा गाना भेजा जरा मुझे बताएंगी प्लीज मुझे लिखकर, क्योंकि आपका गाना मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। ओके और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त प्रमोद जी का पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। काजल झक्का जी अभी आपका गाना नहीं बजा है, अभी जल्दी ही आने वाला है आपका गाना। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। ओके और इसी बात पर अगला जो डिमांड अजय भागा जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये गाना तो तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, बिल्कुल कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे तुमसे सिर्फ मोहब्बत करेंगे, बिल्कुल।

बिल्कुल तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, और जब तक जिएंगे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेंगे। सुंदरता की मुरत जी और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय भगत जी की पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अजय भगत जी की डिमांड बहुत ही बेहतरीन शानदार, धन्यवाद देते हैं उनको। और खुशबू कुमारी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए अजय भगत जी। और नाहिद जी लिखते हैं कि अजय भगत जी की पसंद सुपरहिट अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा भी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिलता है, मजा आ गया। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि वाओ क्या बात है, मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि जी आप इतना लेट से आप फरमाइश करते हैं इसीलिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों की डिमांड छूट जाती है वैसे भी। और यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन गाना है और मज़ा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो नंदलाल यादव जी का है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश वाले का। सुनना चाहते हैं तेरे चेहरे पे लिखा है, इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल मेरी महबूबा है, वैसे गाना भी लाजवाब है। और राहुल पासी जी लिखते हैं नंदलाल जी का ये पसंद बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं उनको इस बात के। और गजानंद जी लिखते हैं नंदलाल जी का पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और खुशबू जी लिखते हैं कि अनसुना सा लाजवाब गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इसी यानी के तराने के लिए। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये तेरे चेहरे पर लिखा है गाना मुझे बहुत पसंद आया। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही शानदार है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए नंदलाल जी। नाहिद जी लिखते हैं कि वाह नंदलाल जी क्या बात है, आपने तो पूरे पुरानी यादें ताजा कर दिया, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और बीके पंजी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, ओके। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि मंजिलें थी उसकी थी, लिखते हैं कि मंजिलें भी उसकी थी और रास्ता भी उसका था, मैं ही एक अकेला था, काफिला भी उसका था और साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर भी रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। अच्छा ऐसा हुआ है। इसके जसवाल जी का गाना सुनते हैं, इसी बात पर इसके जसवाल जी क्या कहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं, सुनवाते हैं क्यों का डिमांड। इसके जसवाल जी एंजॉय द ट्रैक।
1: जितनी

0: वेलकम बैक। और गाने तो ये भी बहुत अच्छा लगा है। इसके जैसा इसके जसवाल जी लिखते हैं अमन जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, गोल्डन जूबली सुपर हिट गीत सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और मेरा भी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल पासी जी लिखते हैं इसके जसवाल जी का गाना भी बेहतरीन लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं इसके जसवाल जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये कितनी दूर वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और खुशबू कुमारी लिखते हैं कि इस गाने के जो है ना लिरिक्स वो बहुत अच्छी लगी जी, बिल्कुल गाना ही बहुत प्यारा है ये। और बीके पंच लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर हिट डिमांड है। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाने को प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और दिलवर कुमार लिखते हैं कि दिलवर जी बहुत अच्छा गाना सुनने को मिल रहा है। और इसके जसवाल जी लिखते हैं अमन जी गीत को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओके जी। और ये फीडबैक,
1: जिद मेरी है कि मुकम्मल है ख्वाहिश आपकी हो, जिद मेरी है कि मुकम्मल है ख्वाहिश आपकी हो, लेकिन आपके दिल को जो सुकून दे जाए, लेकिन आपके दिल को जो सुकून दे जाए, वो चाहत सिर्फ मेरी हो, वो चाहत सिर्फ मेरी हो। थैंक यू, थैंक यू सभी दोस्तों का, थैंक यू। बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने बज रहे हैं, सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छा बज रहा है और आप उनके साथ गुनगुना रहे हैं गाने के साथ, तो और भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी सुन रही हूँ काजंग सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओके, इसी बात पर आपका गाना ही मैं प्ले करता हूँ और ये गाना मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंजॉय द ट्रैक काजल झकास जी, और सभी को डेडिकेट करती है हमेशा, स्पेशली डेडिकेट मिठू मियां जी का है।

वेलकम बैक। सच में गहरा हुआ, गहरा हुआ, गहरा हुआ। और रवि जी लिखते हैं कि कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आता है, लिखते हैं कि कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है। और कब तक छुपाऊं दिल की बात को, और कब तक छुपाऊं दिल की बात को, तेरी हर अदा पे हमें प्यार आता है, तेरी हर अदा पे मेरी। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच कजल सक्का जी। और निर्मल कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल अंजाना लिखते हैं कि काजल सक्का जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और खुशबू कुमारी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद का गाना बहुत ही प्यारा है, जी बिल्कुल। और बिगा पंच लिखते हैं सर जी बहुत ही खूबसूरत गाना है, जी बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठाना लिखते हैं कि ये गाना तेरा हुआ बहुत ही प्यारा लगा है। और मीना जी लिखते हैं, मीना इब्राहिम जी की, वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा पसंद है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि काजल सक्का जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानन जी लिखते हैं कि काजल सक्का जी की पसंद तू अगर बहुत ही प्यारा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी बात पर यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं, वह क्या बात है काजल सक्का जी, आप तो छा गई, ऑसम सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि वह क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये गाना। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ये सुनना चाहती हैं मीना कुमारी जी। मेरी जिंदगी है तू, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा इस गाने को, एंजॉय द ट्रैक, मीना कुमारी जी।

बिल्कुल, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, दिल भर के मालिक थे। वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं के पंजी लेते हैं बेहतरीन डिमांड के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल राहुल जी लिखते हैं कि गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह क्या गाना है। अश्विन भाई बहन जी लिखते हैं कि गहरा हुआ और मेरी जिंदगी है तू, आई लाइक दिस सॉन्ग, ओके जी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि मेरी जिंदगी है तू, गाना मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा।

0: हिला दिया, आमिर खान जी ने बिल्कुल हिला दिया है, और राहुल पासी जी लेंगे आमिर सर जी। जैसा आपका कौन सा गाना है राहुल पासी जी, जरा मुझे बताइएगा प्लीज। और दिलबर जी लिखते हैं कि वाह बहुत अच्छा गाना लगा है, और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत पसंद आया है। काजल झका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: इस धड़कते दिल का साज हो तुम, इस धड़कते दिल का साज हो तुम, मेरी बेताबियों का राज हो तुम, मेरी बेताबियों का राज हो तुम। कैसे करेगी दूसरी कोई दवा काम, कैसे करेगी दूसरी कोई दवा असर, जब सारी तकलीफों का एक इलाज हो तुम, जब सारी तकलीफों का एक इलाज हो तुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे, और सभी दोस्त फीडबैक भी दिए, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद, और आपको शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद। और मैं सुन रही हूँ, अच्छा। और आज का प्रोग्राम बोले तो झक्कास,
0: इसी बात पर मैं कहूँगा कि मेरी हर धड़कन तेरा इंतजार करती है, मेरा मेरी हर धड़कन, मेरी मेरी हर धड़कन तेरा इंतजार करती है, मेरी हर दुआ तुझसे प्यार करती है, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे चाहे चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुझ पर ही एतबार करती है, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुझ पर ही एतबार करती है। और मीना जी लिखते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हर जगह है। और लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को अभी फीडबैक देने के लिए। आमना खान लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि प्यार दो प्यार दो, बहुत अच्छा गाना लगा मुझे। और अच्छा ओके, इतना सैड गाना लाइएगा तो वो तो पीछे जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यानी कि सैड सैड गाने होते हैं मैं सबसे लास्ट में प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं भाई इंजॉय करता हूँ ना, पहले स्टार्टिंग में, लास्ट गाना तो सैड वाला होगा ही होगा। गजानन जी लिखते हैं कि यानी प्यार दो वाला गाना अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सुनील कुमार बांका बिहार वाले का है, तू शायर है मैं तेरी शायरी, बिल्कुल एंजॉय द ट्रैक, तू शायर है।

वेलकम बैक। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल मैं प्ले करूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। गजानंद जी लिखते हैं कि ये सुनील जी के पसंद बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं वह क्या गाना है, सच में दिल खुश हो गया है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनील जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। दिलवा कुमार लिखते हैं कि आई लव दिस सॉन्ग, ओके जी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये तू शायर है, मैं तेरी शायरी वाला गाना अच्छा लगा है। और खुशबू कुमारी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी शामिल कर लेते हैं।
1: अस्सलामुअलैकुम अमन सर जी,
0: जी।
1: मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से
0: हाँ बोलिए
1: जुड़ गया हूँ रेडियो हॉट स्टार से।
0: बहुत देर कर दिया जुड़ने में,
1: लेट हो गया हूँ।
0: हाँ। जी कोई बात नहीं है, देर आए तो दुरुस्त आया। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि साजन मोदी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये तू शायर है मैं तेरी शायरी गाना बहुत अच्छा लगा है। इसी बात का अगला जो डिमांड प्ले करने वाले कपूर चंद जी का खाते हैं कसम। ओके जी, तो खाते हैं कसम इस बात पर। इंजॉय द ट्रैक।

भूले रात 10 बजे से प्लीज जरूर ट्यून करें, और उनके लिए वो लाइन खुलेगी 9:30 बजे। तो 9:30 बजे से अपनी डिमांड भेज सकते हैं, मैसेज करें, और हाँ, और सॉन्ग रिक्वेस्ट करना होगा तो वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही करना होगा। उनका मैसेज खुलेगा 9:30 बजे।

ओ माय गॉड, 9:01 हो चुके हैं और मेरे पास 29 मिनट का समय और बचा हुआ है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना गाना जरूर प्ले करूंगा। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि खाते हैं कसम, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये कपूर जान जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और खुशबू जी लिखते हैं ओ माय गॉड, इतना प्यारा गाना, अब मैं पहली बार सुन रही हूँ, दिल को छू गया ये गाना सच में, थोड़ा और सुन।

अरे तुम तो मेरे दिल में रहती हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं गर्दन झुकाता हूँ और तुम्हें देख लेता हूँ। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत ही बढ़िया गाना है, सच में खाते हैं कसम। क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं रहता इनको सॉन्ग विनर बनाया था। चलिए भाई कपूर चंद जी आपको सॉन्ग के विनर बनाते हैं, ये गाना और सुन सकते हैं आप, लेकिन अच्छा गाना सुनाना होगा आपको, ओके। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लेते हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ आपके गाना, कौन सा है जी मैं कोशिश करता हूँ आपके गाने को प्ले करने के लिए। और मैं बता दूं कि आपका कल गाना मैंने प्ले किया था, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाव में बचाए रखना, ये गाना प्ले हुआ था, सभी दोस्तों ने गाने की तारीफ भी किया था। और ये महेंद्र यानी कि दीपन जी राजस्थान से इससे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राहुल यानी पासी जी लेते हैं कि ये खाते हैं कसम वाला गाना अच्छा लगा है। और यहाँ पे असलम राणा लिखते हैं कि बहुत देर के बाद मेरा गाना हमारे यानी कि मनपसंद जी का गाना मतलब यानी कि प्ले सुनने को मिला है, खाते हैं कसम वाले, इस दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार जी लिखते हैं कि साजन मूवी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ अकबर खान जी का, अकबर खान जी सुनना चाहता है एक सवाल में, एक सवाल क्यों

बिल्कुल, और बाबूलाल जी अकबर जी का डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आया है, और राहुल पासी जी लिखते हैं अकबर जी का डिमांड मुझे बहुत प्यार लगा है, और मोहन भाई लिखते हैं कि आज शायद नहीं हो पाएगा सॉरी, और महेंद्र दीपान जी लिखते हैं कि अरे फरमाइश अब करने का समय नहीं, हाँ आरजे आकांक्षा जी के प्रोग्राम में कीजिएगा, बिल्कुल 9:30 बजे कीजिएगा डिमांड। ओके, गजानंद जी लिखते हैं कि अकबर खान जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, और रविंदर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के, और खुशबू कुमारी लिखते हैं कि ये गाना पहली बार सुन रही हूँ, सो स्वीट सॉन्ग जी बिल्कुल, और अनिल कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लग रहा है, और मीरा जी लिखते हैं वाह क्या बात है। इसी बात पर जो डिमांड है हमारे राहुल पासी जी का है, और ये है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, एंजॉय द ट्रैक राहुल पासी जी।

बिल्कुल तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, और तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और खुशबू जी लिखते कि ये गाना तो वो सच्चाई बयां करता है जो हम कभी नहीं कर पाते। जी बिल्कुल सही बात है। और गजानन जी लिखते हैं कि राहुल इन पासी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये तो प्यार है किसी और की। राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। जाकिर जी लिखते हैं तू प्यार है किसी और की मेरा फेवरेट गानों में से एक है। और अकबर खान लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फरमाइश को चला दिया, और शुक्रिया सभी दोस्तों का और सभी साथियों का जिन्होंने मेरे गाने को पसंद करके फीडबैक दिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है नाहिद अंसारी जी का है, और सुनना चाहती है ये गाना कि मतलब सबसे हम दूर है तुमसे मिलने के बाद। इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल सबसे हम दूर में तुमसे मिलने के बाद मजा आ गया। मीना जी लिखते हैं वाह कितना सुंदर गाना है जी बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं नाही जी के पसंद वाह बहुत ही प्यारा लगा है शानदार लगा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि सबसे हम दूर में ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बाबूलाल जाना लिखते हैं कि नाही जी की डिमांड बहुत ही प्यारा है जी। और नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, अगर समय होता तो सॉन्ग विनर जरूर बनाता आपको। और ओके और खुशबू जी लिखती है कि हम भी रेडियो हॉट स्टार सुनने के बाद सब रेडियो से दूर हो गए। अच्छा थैंक यू सो मच अहो भाग्य हमारे इस मतलब आवाजिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि नाही जी का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद नाही जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है थैंक यू सो मच। अनिल कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा पसंद है थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि नाही जी के फरमाइश लाजवाब। इसी बात अगला जो डिमांड है शेख मोहम्मद ताहिर जी का है वो सुनना चाहते हैं बदल गई दुनिया बदल गया जमाना और मेरा यार भी रह गया पुराना। वैसे कुछ गाना है एंजॉय द ट्रैक बदल गई दुनिया।

और इसके बाद अगला डिमांड राधा कृष्ण गोप जी तैयार है।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। ये मैं क्या करूं, आपका गाना सैड था इसीलिए जरा ये पीछे प्ले करना पड़ा। राहुल पासी जी लिखते हैं कि आंदोलन मूवी का गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और ताहिर जी लिखते हैं कि वाह वंडरफुल चॉइस है और एक नंबर गाना लगा। सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं मेरे गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। एमडी फैज जी लिखते हैं कि नाहिद जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं जेठालाल जी के बदल गई दुनिया वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पे लिखती हैं आमना खान जी सुपर हिट सॉन्ग है जी बिल्कुल। और खुशबू जी लिखते हैं कि वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग है जी बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड है राधा कृष्ण गोप जी का, मैंने सुनवा दिया ये प्यार बड़ा बेदर्दी है।

0: अमिना खान जी को, और अमिना खान जी कॉल रिसीव कीजिएगा। अमिना खान जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है आपका, और आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। कैसी हैं आप?
1: वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो
0: जी? एकदम झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकाचक गारंटी के साथ, एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास है। बोले तो बाकी सब फर्स्ट
1: लय भारी।
0: हाँ लय भारी, यस यस यस, अगर महाराष्ट्र में कहें तो लय भारी। जी
1: जी जी, प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, एक से बढ़कर एक सॉन्ग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते सब।
0: जी जी,
1: के वो जाना भी चाहेंगे तो जा ही नहीं सकते इंसान।
0: बिल्कुल सच में, और सभी
1: प्रोग्राम
0: गाने
1: से निकल,
0: अभी बहुत सारे गाने छूट रहे हैं, मैं क्या ही करूँ, मेरे पास समय कम है, चूंकि आरजे आकांक्षा जी आने वाली है 10 बजे।
1: हाँ जी, वो भी बड़ी बढ़िया है, आरजे वंशिका जी है, सारे सारे सॉन्ग इतने जबरदस्त होते हैं कि वही सोचते रहते हैं कहाँ से लाते हैं, ढूंढते कहाँ से।
0: जी जी, और आप भी तो
1: प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना देते सब,
0: आप भी तो बहुत अच्छा गाना लेके आती हैं।
1: आप भी किसी, हाँ, बस कोशिश रहती है,
0: आप भी मतलब किसी से कम नहीं है, वो बोलते हैं ना, हम किसी से कम नहीं, वही हाल आपका भी है,
1: कम नहीं है। हाँ कोशिश रहती है बस के मजा आ जाए बस।
0: जी जी बिल्कुल, और मजा आ ही जाता है ना चाहते हुए भी, है ना। अच्छा बताइए, आज आप यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे? आज तो बनी है बीना, यानी कि
1: मैं तरस तरस सॉन्ग, मुंजिया मूवी का, मुंजिया।
0: ओके,
1: मुंजिया मूवी है महाराष्ट्र।
0: मैं ये गाना मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्दी अगला जो अपडेट आने वाला है, बहुत से यानी कि लोग का प्रॉब्लम था कि उनके पास मतलब व्हाट्सएप नहीं है और वो फोन रिसीव नहीं कर पाते थे, तो एक एप्लीकेशन में ही ऑप्शन आ जाएगा अपडेट के बाद कि मैं उनको यहाँ से कॉल लगाऊंगा, तो उनको यानी कि रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में ही वो फोन रिसीव कर सकते हैं, हमसे बातें भी होंगी। और एक चीज और बता दूं कि जैसे लोगों का ये कहना है कि ऐड आता है तो रेडियो रुक जाता है, तो रेडियो भी रुकेगा नहीं,
1: हाँ।
0: मतलब उनका एड भी प्ले होते रहेगा, मतलब बहुत सारी जितने भी यानी कि प्रॉब्लम परेशानियां हैं,
1: जितने सारे प्रॉब्लम थे सारे
0: को दूर करने,
1: और
0: जी जी
1: और बेहतरीन बनने वाला है
0: जी,
1: बेहतर से बेहतरीन
0: होने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम मतलब यानी कि समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान करके इसको नया अपडेट किया जा रहा है। अगला अपडेट का इंतजार करें और दुआ करें कि जल्द से जल्द अपडेट आ जाए, बस यही कहूंगा।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ है, और मतलब जो इतना आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं वो तो सबकी दुआएं कबूल होनी ही होनी है।
0: ओके ओके,
1: अपडेट भी अच्छा होने वाला है, और सारे जितने प्रोग्राम है वो सारे इन्हें पहले से और ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, वो बड़ा
0: Okay. और हाँ, एक चीज और है, अभी एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसका नाम है यानी यहाँ पे चैट बॉक्स। वहाँ पे चैट बॉक्स में जैसे बहुत से दोस्त होते हैं कि वो मतलब इन ग्रुप में बातें नहीं करना चाहते हैं,
1: जी, उनको, वंशिका जी ने बताया,
0: उनको बहुत सारे
1: करूंगी,
0: मतलब उसमें यानी बहुत सारे लोगों को यानी मैसेजेस से यानी कि प्रॉब्लम होती थी, तो इसमें मैसेज आएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, वो साइलेंट मोड में रहेंगे, जब आप उसको ओपन कीजिएगा तभी वो मैसेजेस आपको दिखाई देंगे। और दूसरी बात कि आपका नंबर भी कहीं शेयर नहीं हो सकता है, वो नंबर चाहकर भी कोई ले नहीं सकता है, ये चीज है।
1: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत बेहतरीन काम है, मतलब दिन बन जा रहा है, जो वो सही आपने जो लाइन लिखा है, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
0: दीवाना बना, धन्यवाद। तो मैं गाना प्ले कर दूं आपका?
1: जी
0: ओके, एंजॉय,
1: शुक्रिया।

और अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों का है। हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे, दिल फिर भी देते हैं या क्या याद करोगे। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

Mm-hmm.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो,
0: बुरा मत मानना जरूर, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मैं तो बोलूंगा कोई कुंवारा माने न माने, शादी जो कर ले ये वो ही जाने।